अंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अनंत के आगे बेअंत है। अंत होने से पहले बेअंत को जान लो तो फिर अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे। एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुंचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटिया मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुए और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रहे। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुए। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहां से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: ए, क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कह

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल ना कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गई।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जान

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी बर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले। वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा बख्शी जी का पहला गाना था और 29 जुलाई 1963 को रिकॉर्ड हुआ था। किशोर कुमार ने इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में शामिल किया था। पूरे देश में हिट हुई उनकी फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में आई थी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर आनंद बख्शी की सुपरहिट फिल्में छाती चली गई। कुछ फिल्मों के नाम है फर्ज, राजा और रंक, तकदीर, जीने की राह। आरा दना वो फिल्म है जिससे राजेश खन्ना के स्टारडम का रास्ता तैयार हुआ और उसके गीत भी आनंद बख्शी ने ही लिखे थे, जो सुपरहिट साबित हुए। आनंद बख्शी के लिरिक्स की नजाकत और खूबसूरती के चलते लोग उन्हें शब्दों का बाजीगर भी कहा करते थे। उन्होंने अपने 7 दशक के करियर में बॉलीवुड को करीब 4000 से अधिक गाने दिए। इन्हें लिखे गीतों के बोल इन्हें सरल और भावना प्रधान होते थे कि आम आदमी की रूह को छू लेते थे। हर मानवीय संवेदना के ऊपर अलग अंदाज के साथ इनके लिखे गीत सुनने को मिल जाते थे। यही वजह रही कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। ये उनके लिए लोगों का प्यार ही था जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा 41 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 4 बार के फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता रहे। आनंद बख्शी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गानों के जरिए वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। गायक बदलते गए और संगीतकार भी बदलते गए, लेकिन आनंद बख्शी ने अपने कलम का तिलिस्म बरकरार रखा।

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौर गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, SD बर्मन, S मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9, पेश किया आरजे किन्नी ने, और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: Catch the rain, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और एक बार आज फिर लघु कथाओं की श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। और लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सीहोर से

श्री धर्मराज देशराज की लिखी हुई रचना डॉक्टर बाबू। एक ग्रामीण दादा घासी राम ने शहर के प्रसिद्ध पेट के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मदास के क्लिनिक के बाहर खड़े दरबान से पूछा, भैया जी डॉक्टर धर्मदास का अस्पताल यही है ना? वो बोला, हाँ दादा, क्या हो गया तुमको? घासीराम बोले, अरे दो तीन दिन से पेट दर्द कर रहा है, जरा डॉक्टर बाबू को बुला दो। तब दरबान बोला, दादा अंदर काउंटर पर 500 रुपए जमा करा के वहां से पर्ची ले लो, डॉक्टर साहब उस पर दवा लिख देंगे। घासीराम बोला, क्या 500 रुपया? भैया हम लोग तो पूरा परिवार दिन भर मजदूरी करके भी 500 रुपए नहीं कमाते, और यहाँ 2-4 मिनट के 500 रुपए? अरे भैया कुछ कम करवा दो ना। दरबान बोला, दादा हमारे डॉक्टर साहब सुबह से निकलते हैं, पहले सरकारी अस्पताल में जाते हैं, फिर दिन भर प्राइवेट नर्सिंग होम जाकर मरीज देखते हैं, कुल मिलाकर दिन भर में 100 मरीज देखते हैं, कोई उनसे मोल भाव नहीं करता। 100 मरीज यानी 50,000 रुपए रोज, अगर मुझ जैसे गरीब लोग से नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दरबान बोला, दादा ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं है, यहाँ हर आदमी एक दूसरे की लाश पर पांव रखकर आगे बढ़ रहा है, यहाँ दया धर्म की बातें बेकार हैं, यहाँ पैसा ही ईमान है। ये सुनकर घासीलाल ने काउंटर पर जाकर पर्चा बनवा लिया और डॉक्टर से 4 घंटे बाद उनकी जाकर कहीं मुलाकात हुई। सरसरी जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, दादा आपके कागज पर मैंने आपका चेस्ट एक्सरे, आंखों की जांच, खून की जांच सब लिख दी है, उनको कराकर कल फिर चले आना। घासीलाल बोले, सर जी मुझे तो जरा सा पेट दर्द है, अब इसके लिए क्या जांच करा रहे हैं? अरे भाई दवाई लिख दूं ना, कल फिर गांव से आने जाने का खर्च, 3-4 घंटे फिर आपका इंतजार, कितना मुश्किल है आजकल इलाज कराना भी। डॉक्टर बोले, देखो दादा इलाज कराना है तो जांच तो कराना ही पड़ेगा, और हाँ जहां से मैं कहूँ ना वहीं से जांच कराना होगा। तब घासीलाल बोला, डॉक्टर बाबू पेट दर्द में एक्सरे, आंखों की जांच, खून की जांच कराना क्या जरूरी है? मुझे मालूम है जांच की राशि में से ना आपको भी कमीशन मिलता है, सर जी मुझे बख्श दें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर बोला, अरे सभी गरीब हैं, मेरे पास कौन सी नोट छापने की मशीन है, मुझे भी तो रुपया कमाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। घासीलाल बोला, डॉक्टर साहब आप दिन में 50-60 हजार से ज्यादा कमाते हैं, और वो भी बिना टैक्स दिए, जबकि हम मजदूर आदमी आपको फीस ही देनी पड़ रही है इतनी कि उसी में हमारी जान निकल रही है, आपने दवा की दुकान भी अपनी खोल ली है, और दवा भी ऐसी लिख के देते हैं जो कहीं और से ना मिले, आप ही की दुकान से मिले, और यहाँ भी कमाई, एजेंटों से मिली दवाओं का भी आपको विक्रय करना होता है, तगड़ी फीस लेनी है, अरे सब कुछ आपत्तिजनक है, क्या सोना चांदी खाते हो? दादा जाओ यहां से, मुझे नहीं करना तुम्हारा इलाज। तब घासीलाल बोला, ठीक है डॉक्टर साहब मेरे 500 रुपए वापस दिलवा दो, चूने की गोली खा लूंगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा लड़का था वो नहीं मान रहा था तो मैं आ गया आपके पास, उसने कहा था कि डॉक्टर धर्मदास पेट का जादूगर है, मैं सब जादूगरी समझ गया हूं। तब डॉक्टर ने आवाज लगाई, मोहन ये दादा आ रहे हैं, इनकी फीस लौटा देना, जाओ दादा जाओ अपनी फीस दे लो वहां से जाकर। घासीलाल ने काउंटर से अपने रुपए वापस लिए और फिर डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर बाबू जा तो रहा हूं लेकिन एक बात सुन लो, मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के यहाँ पर चपरासी लगा है, तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति है, सब जांच करवा दूंगा, और हाँ ये जो क्लिनिक के बाहर खड़े होकर लोगों को जागृत भी करूंगा, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ये सुनते ही डॉक्टर साहब खड़े होकर घासीलाल का हाथ पकड़कर बोले, अरे दादा आप बैठिए ना, आपको चेक कर लेता हूँ, दवा भी मुफ्त में दे दूंगा, कल तक तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप सच कहते हैं, मानवता भी कोई चीज है। और इस तरह से डॉक्टर ने धर्मराज से और धर्मराज ने डॉक्टर से
अपना पीछा छुड़वाया, लेकिन दोस्तों ये जो कर्म होते हैं ना, ये पीछा नहीं छोड़ते, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों तक भी। इसलिए कोशिश करें कर्म ऐसे करें ताकि हमको अपने कर्मों के ऊपर पछताना न पड़े। और ऐसी ही और शिक्षाप्रद लघु कथाएं सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना मनपसंद FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूँ एक और नई लघु कथा लेकर, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब, चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं, ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने गमों का और मेरी

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन

इरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनाता हूँ इस फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, कोई नजराना लेकर आया है।

0: गीत तो था बहुत मधुर। अब गीत से मुझे इसी फिल्म के एक और गाने का किस्सा याद आया। इस फिल्म में एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी छंद सूर्यास्त के समय शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा

अच्छा तो हम चलते हैं। अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहां केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी है, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत, तेरे कारण मेरे साजन।

आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे जिनमें से ज्यादातर किशोर जी, लता जी और रफी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आम तौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान है कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। कार्यक्रम रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हाजिर हूं आज काव्य गोष्ठी का ताजा अंक लेके, जहां आज के आमंत्रित मेहमान से हम कविता पाठ तो सुनेंगे ही, साथ ही इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और सुनाएंगे इनके मनपसंद गीत भी। नारी सदा ही सम्मानीय रही है। संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता ने आमंत्रण दिया है एक सशक्त नारी को, जो एक शिक्षा विद्वान भी है और साथ में कवित्री भी है, जिनका स्वागत मैं करना चाहूंगा इन पंक्तियों के साथ। स्वागत है तुम्हारा शब्दों की रानी, कविता की तुम हो मधुरिम कहानी, भावों के सागर की लहरें हो तुम, हर दिल की पीड़ा का मरहम हो तुम। आज एफएम 90.0 रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती इंदु शर्मा जी। स्वागत, अभिनंदन आपका आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद भरत जी। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाला के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे इंदु जी, ताकि आपको वो अच्छे से जान सके, साथ ही ये बताएं आपके लिए कविता क्या मायने रखती है।
1: मैं इंदु शर्मा, बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ और आफ्टर मैरिज मैं यमुनानगर में रहती हूँ। पेशेवर मैं एक अध्यापिका हूँ और जैसे कि आपने पूछा कि कविता के मेरे लिए क्या मायने हैं, तो कविता मेरे प्राण है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है। कविता नहीं तो मैं नहीं। कविता, आपने पूछा कि कविता जब आप सोचती हैं या कविता लिखने का सोचती हैं, तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी कवि कविता को नहीं चुनता, कविता हमें कवियों को स्वयं चुनती है
0: जी।
1: तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो ऑलरेडी आती हैं, हम खुद कहीं से भी उनको उपजाते नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी आती हैं। और हाँ, उनमें हम ये अपनी भूमिका निभाते हैं कि हम उन लफ्जों को, उनको पिरोते हैं एक माला में, एक मोती की तरह उनको बांध देते हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो आती हैं और आगे मैं उनको पिरो देती हूँ।
0: इंदु जी, आप एक शिक्षिका हैं
1: जी,
0: एक कविता सुनाइए जिसमें हम समझ पाए कि एक शिक्षिका कैसे उन बच्चों के कोमल मन को समझती है।
1: जी जरूर, मेरी एक स्वरचित कविता का भाव देखिए कि बच्चों को विदा करना कितना मुश्किल है। एक अध्यापिका होने के नाते हर साल बच्चों का एक नया, बच्चों को, नए बच्चों को पढ़ाना, उनको सिखाना, साल भर सिखाना, और जब एक रिजल्ट डे होता है तब बच्चों को विदा करना, तो उस समय जो मेरी मन के भाव होते हैं बीइंग अ मदर टीचर, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सुनिएगा। अपनी झोली के महकते फूल किसी और को देना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हर साल हर बार ये फर्ज निभाती हूँ। हाँ, मैं शिक्षिका ही नहीं, मालिन भी कहलाती हूँ। रंग बिरंगे प्यारे, कुछ बातुनी और कुछ न्यारे, झगड़ालू कुछ सौम्य से अद्भुत जिद्दी प्यारे, मेरी बगिया के सुंदर फूल महके बैर घृणा सब भूल, जिन्हें सहेजा अति प्रेम से बही हो रहे मुझसे आज दूर, कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी। कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है, पर फिर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। खुशी खुशी कर विदा उन्हें मैं नई पौध लगाऊंगी, संस्कारों के जल से सींच कर नए फूल खिलाऊंगी। हाँ हाँ, बेशक है मुश्किल, पर फिर भी मैं ये फर्ज निभाऊंगी, मैं ये फर्ज निभाऊंगी, तभी तो शिक्षिका ही नहीं मालिन भी कहलाऊंगी।
0: क्या बात, यानी कि आपने बच्चों का जो कोमल मन है उसको आप समझने की कोशिश करती हैं हर दम हर समय, ताकि आप उनको जो घर से परवरिश मिलती है
1: जी,
0: उस परवरिश में आप अपनी ओर से उनकी सोच समझ में बढ़ोतरी करती हैं।
1: जी जी।
0: इंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कविता लेखन और इस ऐतिहासिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: देखिए, बात उन दिनों की है जब मैं 5th या 6th में पढ़ती थी, तो हिंदी में मैंने कविताएं पढ़ी बहुत से लेखकों की, और एक थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के
0: जी।
1: इसके अलावा भी महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, कबीर दास जी, रहीम जी, उनके दोहे, इतनी सारी चीजें, मतलब उस छोटी सी उम्र में भी मुझे लगता था कि ये लोग कितने महान होते हैं कि इतना ऐसा कुछ लिखते हैं कि जो आज हम बीइंग अ स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक उनके लिए एक अलग लेवल का ही सम्मान था और एक चाह भी थी कहीं ना कहीं कि क्या कभी कि ऐसे बुक मेरी भी कभी कभी कविताएं शायद कोई छोटा सा एक सवाल मन के किसी कोने में था, तो वही आज पनपा है और आज एक फूल बन के एक काव्य संग्रह के रूप में मेरे हाथ में है, जो अभी 2023 में ही प्रकाशित हुआ है, बुलाता है आसमान करके नाम है मेरे काव्य संग्रह का।
0: इंदु जी, मैं ये मानता हूँ कि जब हमने अपनी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य रखा है
1: जी,
0: उसका सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सपने देखते हैं वही पूरे होते हैं
1: जी।
0: तो इस हिसाब से जब पहली बार आपका कविता संग्रह है प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो क्या भावना थी उस समय?
1: उस समय बस ये लग रहा था कि आजकल पांव जमी पर नहीं लगते मेरे।
0: हम इस बात पर भी आएंगे, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कवि या कवित्री का दिल गहरा, कोमल और संजीदा होता है
1: जी,
0: क्या संगीत को भी उसी सहजता से लेते हैं आप?
1: यस एग्जैक्टली, संगीत तो मेरी प्राण है, जैसे मैंने आपको बताया कि कविता है तो इंदु है, तो संगीत भी ऐसा ही है। मेरा दिन की शुरुआत संगीत से और मेरे दिन का अंत नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं निद्रा में होती हूँ तब भी कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन मन में वो संगीत, कुछ कविताएं, कुछ लफ्ज, कुछ कहानियां, कुछ दोहे, वो चलते रहते हैं।
0: आपने तो संगीत और कविता लेखन को आपस में जोड़ दिया
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि आपका कौन सा ऐसा मनपसंद गीत है जो हम आपको और हमारे श्रोताओं को सुनाएं?
1: जी हाँ, वो गीत है मेरा, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे।
0: क्या बात है, आपने मेरे कहने से पहले ही आपने हमारे श्रोताओं के लिए इसको गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इंदु जी का ये मनपसंद गीत।

0: इंदु जी, आपके जीवन में इंस्पिरेशन कौन रहा है और क्यों?
1: मेरे जीवन में इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी उनकी शिक्षाएं और उनकी जो भी स्लोगन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उनकी जीवनी या उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है
0: जी।
1: और पढ़ा ही नहीं है, मैं उनको अपने जीवन में उतारा भी है और मैं मानती भी हूँ। उनकी एक कोट है, Arise awake and stop not till the goal is achieved। तो मैं उसको, मतलब मैं उसको फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं
0: जी।
1: क्योंकि उनका जीवन देखिए बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया कि आज भी हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं और उनका जन्म दिवस खूब धूमधाम से मनाया जाता है पूरे हमारे इंडिया में
0: जी।
1: तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की या मैंने अपना JBT बीएड हायर एजुकेशन जो भी मैंने कंप्लीट किया, हर बार मुझे स्वामी विवेकानंद जी के क्लब में ही उसका पार्ट बनी हूँ। और जब अब मैं जॉब कर रही हूँ तो वो भी सेम स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हर समय है और मैं खुद को बहुत सशक्त मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और शायद मैं इसी करके आज आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि जो आपने उनका एक कोट मेंशन किया
1: जी,
0: आप प्लीज उस कोट को दोबारा कहिए।
1: जी जरूर। Arise awake and stop not till the goal is achieved।
0: सभी श्रोताओं और युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जिंदगी में लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बनाइए और जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते, आप निरंतर उसके लिए काम करते रहिए। और मेरा विश्वास है कि जब हम उस काम को निरंतर करते रहते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। बहुत खूब। और इंदु जी, यहाँ पर आप कोई कविता हमें, हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
1: जी जी जरूर। मैं
2: उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी,
1: तो जाहिर सी बात है कि नारी के बारे में जरूर बोलूंगी
0: जी।
1: कि कोमल हूँ पर निर्बल नहीं, साहसी हूँ पर दुर्बल नहीं, लक्ष्मी हूँ और दुर्गा हूँ, हूँ शाश्वत रूपिणी शक्ति में, हूँ सहनशील और धैर्यवान भी, ओजस्वी और विदुषी भी मैं, मुक्त हूँ हर छल कपट से, ममत्व प्रेम का अथाह सागर हूँ मैं, भाव हूँ और अभिव्यक्ति भी, हूँ किरण पुंज सूर्य की, चिरकाल से अभ्यासरत हूँ, कर्मशील प्रयासरत वचनबद्ध सृष्टि के सृजन में, हर दायित्व अपना निभाऊंगी, शनै शनै उभरूंगी मैं, शनै शनै उभरूंगी मैं, हर शय में यूं बिखरूंगी मैं, हो ये धरा या वो गगन चहु और होगा गान ये, हो ये धरा या वो गगन चहु और होगा गान ये, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, हाँ मैं सशक्त हूँ।
0: क्या बात है इंदु जी। मैं चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से जो आपने, जो संदेश आपने देना चाहा, मैं चाहूंगा कि इसी कविता को सामने रख के आप हमारी जो नारी समूह है
1: जी,
0: उनको
1: जी,
0: आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: उनके लिए एक बहुत ही सुंदर भाव है मेरा
0: जी,
1: जिसका शीर्षक है जज्बा बरकरार रखिए। कि हाँ आप खास हैं, बस यही एक जज्बा बरकरार रखिए
0: जी।
1: कि हाँ आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, किसी को हो या ना हो आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए
0: जी।
1: आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए, बेशक बहें आंसू आंखों से, बेशक बहें आंसू आंखों से, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होंठों का पहरेदार रखिए, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होंठों का पहरेदार रखिए, आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारा भी मकसद यही है, FM 90 भी हमेशा कोशिश करता है कि जो हमारी नारी शक्ति है उनको समय दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, ताकि वो अपने समाज में जितना भी वो देते हैं उससे भी ज्यादा वो समाज को दे पाएं, अपने घर को दे पाएं अपने बच्चों को दे पाएं, और अगर हमारा युवा सक्षम है तो हमारा देश भी सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंदु जी, हम सबका जीवन और एक कवित्री का जीवन में साधारणतः आसपास क्या घटित हो रहा है कितना आवश्यक है?
1: बहुत आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना आवश्यक है। देखिए, समाज में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है उसको एक सच्चे लफ्जों में और उसको सही तरीके से आम आवाम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये काम एक लेखक का ही है, एक कवि का ही है, क्योंकि वो अपने लफ्जों के जरिए ही अपनी चीजों को, अपनी बातों को समाज तक पहुंचाता है।
0: अपने शब्दों के जरिए वो लोगों तक अपनी बात को
1: पहुंचाता है, और बहुत जरूरी है ये,
0: यानी कि ऑब्जर्वेशन
1: बहुत
0: जरूरी
1: है।
0: मैं एक कलाकार हूं, और कलाकार भी हमेशा जब भी वो घर से निकलता है वो ऑब्जर्व हर कोई चीज करता है, तभी वो अलग अलग किरदार निभा सकता है
1: जी।
0: पर कवि या कवित्री इतने सारे किरदार निभाते हैं जो अनगिनत होते हैं, क्योंकि जहां पर उसका ध्यान जाता है और उसी पर वो लिखना शुरू करता है। जब रेडियो विदस्ता FM 90 के साथ आपका संपर्क हुआ
1: जी,
0: या हमारे साथ संपर्क हुआ
1: जी,
0: क्या एक कवि का मन वहां पर आया कि आपने क्या हमारे बारे में या हमारे FM 90 के बारे में भी कुछ लिखा?
1: यस ऑफ कोर्स सर, जैसे कि एक हुनर है मुझ में कि चेहरे के साथ साथ मैं लोगों के रूह को भी पढ़ लेती हूँ।
0: बहुत खूब।
1: तो आपसे मेरी सिर्फ बात ही हुई थी, अब तक मैं आपसे मिली नहीं थी
0: जी।
1: तो बस ये यमुनानगर से अम्बाला तक आते आते बीच रास्ते में बस ये कुछ ख्याल आए हैं।
0: अच्छा, इसका सृजन अभी हुआ है?
1: जी हाँ जी हाँ। तो सुनिए।

0: नहीं मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जनाब।
0: इंदु जी, आप एक माँ है, शिक्षिका है
1: जी।
0: बच्चे आपके मन को कैसे अपने जैसा बना लेते हैं? कोई कविता इस संदर्भ में हमारी श्रोताओं को आप कृपया सुनाइए।
1: जी हाँ, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ और माँ भी हूँ, तो ये बात है उन दिनों की, मेरा छोटा बेटा काफी बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज था
0: जी।
1: और काफी बीमार हो गया था, तो उस दौरान भी मुझे कुछ लव्स, कुछ भावनाएं उमड़ रही थी जिन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। एक, क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ तो मुझे अपना वर्क प्लेस भी देखना था, वहां भी बच्चों को देखना है, और एक मेरा अपना बच्चा जो जूझ रहा है मुझे उसे भी देखना था। लाइक दिस कि मुझे दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना था, एंड आई डिड नाइसली बोथ जॉब्स। लेकिन उस दौरान एक भाव आया, उसे सुनिएगा कि रो मत। एक माँ का भाव देखिएगा कि वो किस तरह खुद को भी स्ट्रांग कर रही है और अपने बच्चे को भी स्ट्रांग कर रही है। कि रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी। रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी। हौसले से ही जीते जाते हैं, हो जंग या फिर दर्द कोई। हौसले से ही जीते जाते हैं, हो या जंग कोई या दर्द कोई। रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी। रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी। क्या संभालूंगी तुझको जब खुद ही ना संभल पाऊंगी। क्या संभालूंगी तुझको जो खुद ही ना संभल पाऊंगी। सहन कर इस दर्द को, सहन कर इस दर्द को। तुझको जो यूं डरा रहा मत टेक घुटने आगे इसके। यूं ही तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को। तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को। आथाम हाथ मेरा।
0: क्या बात।
1: आथाम हाथ मेरा, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी। मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी। बस अब रो मत, रोने से गर कम हो जाता तर तो रो लेती मैं।
0: क्या बात है। इंदु जी, हम नमन करते हैं आपको, एक माँ को, क्योंकि माँ ही हमारी सृष्टि की जननी है, और जब वो इतनी स्ट्रांग है तो उसके आसपास का जो माहौल है वो कितना स्ट्रांग होगा, सक्षम होगा, इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए। और अब एक और गीत की गुंजाइश है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपका एक और मनपसंद गीत सुने। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका मनपसंदीदा सिंगर यानी कि गायक कौन है?
1: मेरे मनपसंदीदा सिंगर हैं सतिंदर सरताज जी, पंजाबी सिंगर हैं
0: जी।
1: और उनकी हाल ही में पीछे शायर मूवी आई थी
0: जी,
1: तो उसे मैंने देखा, और उसका एक गाना है, कोई तेरे नाल मोए पुराना तू मने आना मन ही। और वो जिस भाव से वो लिखते हैं ना, बहुत नेचुरल लिखते हैं और इतना मतलब ठहर के लिखते हैं कि मतलब सीधा रूह को स्ट्राइक करता है। उनको मैं इतना सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ, और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को एक बार फिर गुनगुनाएं
1: जी,
0: ये सोच के कि जैसे सतिंदर जी गा रहे हैं।
1: वाओ।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमारे साथ हैं शिक्षा विद्वान और कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा जी। इंदु जी, आप कविता के साथ साथ क्या लिखना पसंद करती हैं?
1: सर, कविता के साथ साथ मैं शॉर्ट स्टोरीज जैसे लघु कथाएं, दोहे
0: जी,
1: ये सब भी मैं लिखना पसंद करती हूँ।
0: तो हमारे श्रोताओं को आप कुछ आपके लिखे हुए जो दोहे
1: जी,
0: वो सुनाएं, क्योंकि दोहा हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो कुछ शब्दों में बहुत कुछ बता देता है।
1: जी जी, तो ये दोहा मेरा है, पहले तो मन के भाव पे है कि तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर। तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर, ऐसो वैरी मन बावरो, ऐसो वैरी मन बावरो, हर पल रहे अधीर।
0: क्या बात,
1: तो ये तो
0: इसका आप कुछ अर्थ भी बता सकते
1: अर्थ
0: हैं?
1: ये है कि देखिए, जो हम लोग हैं, तृष्णा मीन्स चीजों के पीछे कामनाएं, इच्छाएं, हमारा लालच कभी भी खत्म नहीं होता। शरीर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इंसान, लेकिन तृष्णा जो भूख है वो कभी भी नहीं मिटती है
0: जी।
1: और मन जो है हमारा, सबसे मन जो है इतना चंचल है, इतना बावरा है, पागल बना के रखता है, मतलब वो हर समय अधीर रहता है। अगर एक इच्छा पूरी होगी तो अब मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, तो इस पर है ये दोहा। इसके बाद है प्रेम पर है
0: जी।
1: सच्चे प्रेम का मतलब एक रूप दिखाता हुआ, एक आईने की तरह बोल लीजिए कि देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई। देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई, जो मन की देहरी टपे सो सच्चा प्रेमी होए। इस दोहे में मैंने ये भाव दिए हैं कि सच्चा प्रेम क्या है
0: जी?
1: ये आपके जो बाहरी व्यक्तित्व है ये उसको नहीं दर्शाता। सच्चा प्रेम वो है जो किसी की आत्मा, किसी के मन के अंदर आप समा जाओ, या कोई आपकी आत्मा आपके मन में कोई समा जाए, वो सच्चा प्रेम है अकॉर्डिंग टू मी। और एक और है कि रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। यूं तो रतन अनेक हैं, यूं तो रतन अनेक हैं, पर मोती सा ना कोई।
0: क्या बात,
1: इकट्ठा इनका एक मैंने भाव दिया है कि हर रंग में प्रेम का रंग जो है वो सबसे अनुपम है, उससे बढ़कर कोई भी रंग नहीं है जीवन में। और ऐसे तो अनेक मोती हैं आजकल, अनेक रत्न हैं इस पूरे संसार में, लेकिन मोती जैसा रत्न कोई नहीं है।
0: क्या बात है, कवि या कवित्रियां
1: जी
0: प्रेम के ऊपर ही लिखती हैं
1: जी,
0: या समाज में जो आसपास हमें दिख रहा है उस पे लिखती हैं, या बच्चों पर। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है, क्या वो एक ही है या कुछ भी जो आपके सोच या आपके ऑब्जर्वेशन में आता है?
1: देखिए, मैं शिक्षिका हूँ और नारी हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन के हर रंग, सुख दुख, हर पहलू, हर छोटी छोटी चीजों को मैं बारीकी से लेती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और हर जीवन के हर रंग पर मैं अपनी कलम को आजमाती हूँ, और मैं हर लम्हे पर हर चीज को देख कर बारीकी से उस पर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रंग है, ढेरों रंग है जीवन के, और मैंने अपने जीवन के हर छोटे छोटे लम्हों को कविताओं में पिरोया है।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी कि आने वाले दिनों में जब आपके पास समय होता होगा, आप अपना कविता संग्रह पढ़ेंगे, तो आप उन पुरानी यादों को एक बार फिर याद करते होंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो उस समय कैसा आपको लगा, और उसके लिए आपने कितनी सारी मेहनत करी, और कवि है या कवित्रियां हैं
1: जी,
0: उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जब एक कविता लिखना शुरू हो जाता है तो वहीं से ही एक कविता संग्रह की शुरुआत होती है, तो आप प्लीज बताइए।
1: सर, बात ऐसे है कि जब मैं कविताएं लिखती थी, मुझे विचार आते थे तो मैं उनको संजोती थी, लिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ना एक छोटा सा डर था अंदर कि शायद तब तक मैंने खुद को नहीं पहचाना था कि मैं क्या हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए
0: जी।
1: तो मुझे एक डर रहता था कि खुद को, मैं कहती थी कि मेरे पास जैसे डायरीज हैं तो मैं उनमें लिखती थी जो भी ख्याल आते, तो मैं खुद को कहती थी कि इंदु तू ये लिख तो रही है पर पता नहीं ये कहीं यूजलेस ना हो, ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसे पता चलेगा कि तुमने इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि देखिए माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे एक लेखक को उसका हर लफ्ज बहुत अजीज होता है। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं लिख तो रही हूँ, हर रोज लिख रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आ रहा मैं लिख रही हूँ, लेकिन क्या कभी, मतलब वो सवाल भी पूछते डर लगता था मन को। लेकिन हुआ यूं कि कोरोना काल के दौरान मेरे खुद को काफी समय मिला, तो उस दौरान कुछ और कविताएं बहुत अच्छे से आई, और जो मैंने ऑलरेडी लिखी थी उनको मैंने फिर से पढ़ा, मैंने उनको फिर से एडिट किया, बार बार उनको पढ़ा, अपने पतिदेव को सुनाया। मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें सुनाया और बार बार उनको एडिट किया, जहां मुझे लगा कि नहीं ये हल्का शब्द है, थोड़ा सा इसका रिदम ताल थोड़ा और अच्छा हो सकता है, यहाँ ये लफ्ज होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, तो वो एडिट किया। कहीं से मुझे, किसी फ्रेंड से मुझे एक प्रकाशक का नंबर मिला, तो नूर साहब जी, उन्होंने मतलब प्रोत्साहित भी किया कि बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी एज में आप उस तरफ जा रहे हो और आपके पास इतनी सारी बल्क में यू हैव मतलब मोर देन 200 कविताएं आप लेकर आए। कुछ बारीकियां भी उन्होंने समझाई और उन्होंने इसमें हेल्प की कि मेरी एक पुस्तक का रूप देने में, काव्य संग्रह के रूप में मेरी पुस्तक को लाने में उन्होंने मदद की, अशोक नूर साहब जी जो जगाधरी के हैं, वो भी एक प्रख्यात प्रोफेसर हैं और शायर हैं, नज़्म और गजल लिखते हैं।
0: आपने अपनी बातों में अभी अपने पतिदेव जी की बात की
1: जी।
0: आमतौर पर हमने देखा है कि कोई शायर है
1: जी,
0: जब वो कोई शायरी लिखता है या लिखती है
1: जी जी,
0: तो वो हमें पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे ये शेर सुनो, और जबकि हम भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो आपके हस्बैंड है
1: जी,
0: जब आप उनको अपनी कविता सुनाते हैं
1: जी जी,
0: तो क्या रिएक्शन रहता है उनका?
1: उनका रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है, टचवुड। वो एक गुरु की तरह है, वो मतलब मैं उनकी छाया हूँ, मैं कुछ भी नहीं उनके बिना। उन्होंने आफ्टर मैरिज, मैं मैरिज से पहले मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट थी
0: जी,
1: और आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट करवाई, और अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी भी लाइफ में मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ और वो हमेशा मेरे साथ हैं। वो दो कदम आगे और दो कदम पीछे, मेरी साइड्स हर तरफ वो मेरे साथ रहते हैं, और जब भी मैं कोई कविता लिखती हूँ तो सबसे पहले मुझे होता है कि मैं उन्हें कहीं भी वो मेरे पास हो ना हो कि उन्हें सुनानी है, तो उसमें एडिटिंग करना, उसको सुनना, उसमें सुधार करना, वो मेरे गुरु हैं, वो हर समय मेरे साथ। इतना मैं खुद को नहीं सपोर्ट करती जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: क्या हम माने कि वो आपकी कविताओं के क्रिटिक भी है?
1: यस ऑफ कोर्स, वो मुझे बोल देते हैं कि ये क्या लिखा है तुमने, यहाँ तो ऐसे होना चाहिए था।
0: तो मेरा तो मन कर रहा है कि सुशील जी
1: जी
0: हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी भी राय लूं। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जब इंदु जी आपको अपनी कविताएं सुनाती हैं तो आपके भाव क्या होते हैं? आप दिल से सुनते हैं या उसमें दिलचस्पी लेते हैं, और हमारी श्रोताओं को और अपकमिंग जो पोइट या पोइटेस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नमस्कार भरत जी, जैसे कि आपने कहा कि इंदु जी आपको कविताएं वगैरह सुनाते हैं, पहले तो कुछ अजीब सा लगता था
0: जी,
2: लेकिन अब सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वो जीवन का हिस्सा बन गया है
0: जी,
2: और सुनने में अच्छी लगती है। जब से ये बुक आई है तो लगता है कि हाँ ये कुछ कर पा रही है
0: जी,
2: कुछ कर रही है
0: जी।
2: बाकी रही सुधार की बात, तो ये होता है कि सुनते सुनते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें ये लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा बताना चाहिए। और बाकी मैं नई उभरती हुई जो लेखिकाएं हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप भी लिखिए, अच्छा लिखिए, और उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट करें कि वो भी एक अच्छी लेखिका बन पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दी, और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सीखने समझने की बात है। और आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, इंदु जी के साथ साथ क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में सुशील जी भी एक शायर बनेंगे और उनका भी एक कविता संग्रह आ जाए?
2: नहीं नहीं, इंदु जी ही बहुत है जी, एक ही शायर, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है जी, तो उसी को रहने दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद जी भरत जी, आपने हमें बुलाया और इतने सुनहरे पलों को जीने का एहसास करवाया, और ये हमें आज बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। पहले हम ये मोबाइल पे टीवी पे देखते थे कि क्या स्टूडियो होता है, आपने सारा हमें दिखाया कैसे क्या होता है, कैसे ये रेडियो का ये होता है, हम तो सिर्फ सुनते थे, आज हमें देखने का बोलने का ये मौका मिला, ये बहुत अच्छा और बहुत यादगार पल है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम का इंदुजी समय जो है वो समाप्त होने को है, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजन के लिए क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं अपने गुरुजनों को तहे दिल से उनका शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूंगी। तो गुरु तो देखो हर समय आपके आस पास चारों ओर गुरु है, तो मैं समझती हूँ कि गुरुओं की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी हैं और मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में बहुत से गुरु हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज जीवन में मैं आगे कुछ कर पा रही हूँ और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो उम्मीद करती हूं।
0: हम उम्मीद करते हैं और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, आपको इस सफर में कामयाबी मिले और आपके बहुत सारे कविता संग्रह आए, और जब भी आपका कविता संग्रह आए आप हमारे पास भेजें, हम भी उन कविताओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। आखिर में क्या आप हमें कोई अंत में कोई कविता सुनाना चाहेंगे?
1: जी जरूर, एक प्रेम रस पर है
0: जी।
1: एक अल्हड़ अपने प्रियतम के लिए कुछ भाव लिए हुए कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, आ तुझ में मैं तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कि आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कुछ और नहीं ख्वाहिश बस इतनी सी मेरी, कांधे पे तेरे रख सर अपना, अब मैं भी चैन की नींद सो जाऊं, जब सब गुजरे और हो सहे फिर बन सूरज की पहली किरण, बिखरूं आंगन में तेरे उजाले से तेरा जीवन भर दूं, संग रहूं तेरे बन साया, खुशियों से तेरा मैं घर भर दूं, और फिर ढलते ही सूरज के आगोश में तेरी घर कर जाऊं, आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी कविता के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन। इंदु जी आपका और सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आमंत्रण पर यहाँ आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविता पाठ करने के लिए। हम आपके आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके दिन अच्छे हों।
1: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और भरत जी का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और मुझे अपनी कविताएं आपके साथ साझा करने का ये सुनहरे पल दिए। तो मैं इनको भी ढेरों शुभकामनाएं दूंगी कि दिन प्रतिदिन इनकी भी जो उन्नति है वो परमेश्वर चाहें और करें, और हम भी समय समय पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
0: और रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio with Asta, hum safar zindagi ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: अजय सुना सरदारा, की हाल है?

0: कुमार, अरे तुम बस गाड़ी को भी यहीं पंक्चर होना था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा,
1: इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजुमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यही हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: सुनन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकाई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता आम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है।

0: सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: रेडियो विदिस्ता FM 90

0: ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

تو چھو بوزان 90.0 ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی ہوں۔

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: जब तक रहे

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

दुनिया ना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रूजियो पनिन पसंदीद बगत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
4: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
3: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
4: अब आगे क्या करने का सोचा है?
3: आगे का तो अभी फिलहाल,
4: रे अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
5: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
6: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक महेंद्र कपूर पर आधारित है। पेश करेंगी RJ किरणी।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज का ये खास प्रोग्राम हमारे सबके प्रिय सिंगर महेंद्र कपूर जी को समर्पित है। महेंद्र कपूर जी ने अपनी सुरीली आवाज से हमें कई यादगार गाने दिए हैं, जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महेंद्र कपूर के गानों का ये सफर।

महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। गायकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने जल्द ही अमृतसर से मुंबई का रुख लिया। बचपन से ही महेंद्र कपूर महान गायक मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित थे। वे एक तरह से मोहम्मद रफी के शागिर्द थे और उनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। शायद यही वजह है कि कई बार उनके गानों में, खासकर शुरुआती दौर के उनके गानों में, रफी के प्रभाव की साफ झलक मिलती है। उनकी दिली इच्छा थी कि वे हिंदी फिल्मों में गाएं। शुरुआत में महेंद्र कपूर ने शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त की थी। उनके जीवन में प्रमुख मोड़ उस समय आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीती। 1957 में हुई इस प्रतियोगिता के जज संगीतकार नौशाद अली थे, जिन्होंने फिल्म सोहनी महिवाल के गीत चांद छुपा है और तारे डूबे को महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनको वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आदि गीत गाया, जो कि कामयाब रहा। सी रामाचंद्रन के संगीत से सजे इस गीत ने महेंद्र कपूर के पांव फिल्म जगत में मजबूती से जमा दिए।

महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफी साहब के साथ थे। उस समय रफी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मोहम्मद रफी की कहीं किसी भी बात को मानने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज मिलती है। उस दिन से ही दोनों ने कभी साथ गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ 1968 में आई फिल्म आदमी का गीत कैसी हसीन आज बहारों की रात है, इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज को डब किया था। ये गाना पहले रफी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गायक के साथ डब करना पड़ा और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफी साहब और महेंद्र कपूर ने साथ में अपना पहला और एकमात्र गाना गाया। दोनों के बीच हुए इस पूरे किस्से का खुलासा महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने किया था।

इसके बाद उन्होंने भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार और बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी अधिकतर फिल्मों के गीतों के लिए भी आवाज दी। एक समय महेंद्र कपूर की आवाज भारत की जीवंत आवाज कहलाती थी। देशभक्ति गीतों का ख्याल आते ही सबसे पहला नाम उनका ही आता था। लेकिन चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए और किसी पत्थर की मूरत से गाने के उनके गानों में विविधता प्रदर्शित हुई। इसके अलावा वो पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने कई अंग्रेजी गाने रिकॉर्ड किए। यही नहीं, महेंद्र कपूर ने लगभग सभी भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गाने गाए। कई गीत जो उन्होंने गाए वो सदाबहार हो गए। उनके गानों की दीवानगी ऐसी कि देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके गीतों के कायल थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफी, किशोर और मुकेश जैसे बड़े नाम थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना शायद महेंद्र कपूर ही कर सकते थे। महेंद्र यूं तो रफी का अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफी के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सीख ली और उसे बखूबी अपने गीतों में

70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों के दिलों में बेहद करीब है। प्रीत जहां की रीत सदा हो या मेरे देश की धरती, इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव रखी वो आज भी कायम है। आज भी हर भारतीय जब इन गानों को सुनता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ आता है। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में पेश किया तो उनके इस छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज ने। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वैसे तो महेंद्र कपूर के जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बेहद मशहूर हैं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का प्रोग्राम सुनहरे पल जारी है। महेंद्र कपूर को हर मूड का गीत गाने वाला समझा जाता था। वो किसी भी तरह के गीत को बेहद ही सरलता और गंभीरता के साथ निभाते थे, चाहे वो देश में सबसे ज्यादा बजने वाला देशभक्ति गीत हो या धर्म अधर्म की सीख देते महाभारत के गीत, या फिर प्यार में डूबे किसी प्रेमी के दिल की आवाज, या जिंदगी की कश्मकश में धीरे किसी शख्स के दिल की आह। हर गीत को हर तरीके गाने की कला था महेंद्र कपूर के पास। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में आज भी वो जादू है कि उन्हें सुनते ही हर कोई उनकी आवाज को खुद की समझ गीत गुनगुनाने लगता है।

हमेशा मस्त नगमे सुनाने का वादा करने वाले महेंद्र कपूर अगले कई दशक तक संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज से मोहित करते रहे। उन्होंने जब फिल्मी जगत में पदार्पण किया वह हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था और पार्श्व गायकी में मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार और हेमंत कुमार को टक्कर दी और उनके बीच राह बनाना कोई आसान नहीं था। ये एक कठिन चुनौती थी, लेकिन दुनके पक्के और पुरुषार्थ से बड़े कपूर ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि पार्श्व गायन की विविधता को नए आयाम भी प्रदान किए।

बी आर चोपड़ा से उनका साथ टीवी धारावाहिक महाभारत में भी रहा। धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को महेंद्र कपूर ने ही स्वर दिया था। धारावाहिक के प्रारंभ से ही महेंद्र कपूर की आवाज से सजे श्लोक आदि दर्शकों को टीवी के सामने बांधे रखने में बहुत सफल हुए। महेंद्र कपूर ने दादा कोंडके के लिए उनकी अधिकतर मराठी फिल्मों में भी गीत गाए। उन्होंने सी रामचंद्रन और पी नायर, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे विभिन्न संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी विशेष जोड़ी रवि के साथ बनी। उन्होंने रवि के साथ मिलकर कई हिट गीत दिए। इन गीतों में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, नीले गगन के तले, तुम अगर साथ देने का वादा करो और किसी पत्थर की मूरत से आदि गीत शामिल हैं।

अपने लंबे कैरियर में महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1968 में उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती के लिए महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1964-68 और 1975 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देश विदेश में उन्होंने अनेक चैरिटी शो किए। सुनील दत्त और नरगिस के साथ सीमा पर तैनात फौजी जवानों के लिए उन्होंने कार्यक्रम दिए। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान करके इस गायक का मान बढ़ाया। 27 सितंबर 2008 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से महेंद्र कपूर का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके सदाबहार नगमों कानों में मिश्री गोलते हैं। आज भले ही महेंद्र कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां उनकी आवाज का जादू हमेशा बना रहेगा।

ये था आज का सफर महेंद्र कपूर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक महेंद्र कपूर पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: रूप तेरा मस्ताना प्यार

0: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
1: चिट्ठी न कोई संदेश,
0: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनकी वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया।

0: वो छोटी सी रात वो लंबी
1: उनकी गजल गायकी चिराग के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पार गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से संजीदा जज्बात से

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से

कि धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।

शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं, गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। एक ऐसी आवाज जो हमारी रूह तक दस्तक देती है। जी हाँ, आप सुन रहे थे सुहाना सफर कार्यक्रम, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। हम हर दिन कोशिश करते हैं कार्यक्रमों को तैयार कर आप तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके दिल तक यानी हम आपके रूह तक पहुंच पाए। हम है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जिसकी स्वीकृति मिली है अंबाला के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। आज के लिए बस इतना ही। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आप सभी श्रोताओं को एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, हर शुक्रवार को हम एक लाइव शो करते हैं जो रेडियो पर भी लाइव होता है 11:30 बजे सुबह, और साथ में हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइव होता है। कार्यक्रम का नाम है भगवद गीता जीवन का आधार। इसका एपिसोड 4 हम कल लेके आ रहे हैं सुबह 11:30 बजे से। आप इसमें गीता जी के बारे में सुनते हैं, वो हमारे जीवन में किस तरीके से प्रासंगिक है, हमारे जीवन को कितने किस तरीके से सुगम बनाती है, जो उपदेश है वो हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर भी देती है। इस श्रृंखला में कल हम एपिसोड 4 ला रहे हैं। हमारे साथ होंगे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर राधा मध्यस्था, और ये हमसे जुड़ेंगे जापान से, यानी कल से हमारा ये जो शो है ये अंतर्राष्ट्रीय शो भी हो रहा है। बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं डॉक्टर राधा मध्यस्था, जो कि जापान में पिछले 28 साल से रह रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ाती हैं, और साथ में गीता परिवार की अध्यक्षा भी है जापान की। उन्होंने वहां पर कुछ लोगों के साथ शुरुआत की कि वो गीता पढ़ें, और चाहे उसमें ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जापानीज में हो या इंग्लिश में हो या संस्कृत में हो, तो बहुत सारे लोग आज के डेट में जापान देश में भी गीता के उपदेश को स्वीकार कर उस पर अमल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में तो है ही, तो इस समय गीता परिवार 14 भाषाओं में हमारे देश के सभी नागरिकों तक अपनी जो बात है वो पहुंचाते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए। तो जरूर जुड़िएगा कल हमारे साथ 11:30 बजे। हमारे फेसबुक पेज fb.com/radiovitasta पर और हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर भी लाइव होगा ये कार्यक्रम। तो दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेने से पहले एक खास विषय पर हम आपसे बात करते हैं, और साथ में कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं और कल के कार्यक्रमों का विवरण भी देते हैं। श्रोताओं, आज 30 जुलाई है। आज का दिन कैलेंडर का कोई आम दिन नहीं है, बल्कि यह दिन इंसानियत की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लेने का है। आज पूरी दुनिया में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मना रही है। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए मासूम लोगों की स्थिति के बारे में समाज को जगाना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना और इस आधुनिक गुलामी को जड़ से खत्म करने के लिए आवाज उठाना। यह एक गंभीर चुनौती है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोगों को सचेत करें, उन्हें मदद करें। मानव तस्करी समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो मासूम बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को उनके हक, उनकी आजादी और उनकी मुस्कान से महरूम कर देता है। चंद पैसों के लालच में इंसानों की खरीद फरोख्त करना और उन्हें बंधवा मजदूरी या दलदल में धकेल देना किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए इस विशेष दिवस का मकसद केवल इस अपराध के खिलाफ कानून बनाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को सतर्क करना भी है। हमारे आसपास यदि कोई संदिग्ध गतिविधियां देखी जाए या किसी मासूम का शोषण हो रहा हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक समाज का हर व्यक्ति इस अपराध के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक हर आंचल सुरक्षित नहीं हो पाएगा।
रेडियो विदस्ता आज इस मंच से यह संदेश देता है कि हर इंसान आजाद पैदा हुआ है और उसकी आजादी की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए सजग बने और किसी की ढलती हुई जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगाएं। तो श्रोताओं, इंसानियत और जागरूकता के इसी जरूरी संदेश के साथ अब वक्त हो चला है कि आज इस प्रसारण को यहीं पर थाम लें। आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका जीवन का प्रवाह और आपका अपना सामुदायिक रेडियो। आज के इस सफर से अब आप रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आपसे विदा लेता है और इन सुंदर पंक्तियों के साथ आप सभी के लिए पंक्तियां आज की यूं है, वितस्ता की लहरों से गूंजती रहे बस इंसाफ की बात, वितस्ता की लहरों से गूंजती रहे बस इंसाफ की बात, कोई मासूम न भटके अंधेरों में न आए ऐसी रात, लेकर नया सवेरा आज के इस सफर को देते हैं विराम, चलो फैलाएं उजियारा और महकाएं आने वाली सुबह का पैगाम, लेकर नया सवेरा आज के इस सफर को देते हैं विराम, चले फैलाएं उजियारा और महकाएं आने वाली सुबह का पैगाम। तो चलते चलते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल महीने का आखिरी दिन 31 जुलाई 2026 शुक्रवार को 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम और प्रकाश प्रवाह से, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और कल शुक्रवार है, आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10 होगा, ओपी नैयर पर तैयार किया गया कार्यक्रम पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 शुक्रवार को आप सुनते हैं रंगमंच की ओर एपिसोड 6, और कल हमने फिल्म चुनी है साहिब बीबी और गुलाम, पेश करेंगे मानव मेहरा। 9:30 आप सुनेंगे बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और ये कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर तैयार किया गया है क्योंकि कल मोहम्मद रफी को पूरे विश्व में याद किया जाएगा, पेश करेंगे रमेश मराठा। और 10:25 फिल्मी किसे एपिसोड 2 कटी पतंग हमने फिल्म चुनी है कल के लिए, पेश करेंगे दीपक कश्यप। 2 बजे आपको इंतजार रहता है शुक्रवार को कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, कल हमने नया और ताजा तरीन कार्यक्रम तैयार किया है आप सभी के लिए इस हफ्ते की फरमाइशों के आधारित पर। 6 बजे भक्ति संगीत सुनेंगे और 6:30 शाम गजल और 7 बजे सुनहरे पल एपिसोड 2, ये भी कार्यक्रम मोहम्मद रफी के ऊपर तैयार किया गया है, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है ठगा ठगा सा है मौसम। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद है कि आज की बातें और ये सफर आपके दिलों तक छू गया होगा। आप अपना फीडबैक हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010, नंबर एक बार फिर 7056413010। कल फिर हाजिर होऊंगा मैं इसी तरंग पर कुछ नई सकारात्मक चर्चाओं, पुरानी यादों और बेहतरीन तरानों के साथ। जब तक अपनों का आप ख्याल रखिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।